Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: हो सुल्टिनहरू पट्टन त गफै दिएर त हो नि आजकल साँचो बोलेर कामै छैन ल अब घान्द्रुक ढुलो
1: मजा
2: अब
3: जाउँ।

0: 2 7 4
1: अग्निको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छु गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक आवर सर्विसेस डिलक्स रूम विथ एसी हट एण्ड कोल्ड वाटर एलईडी टिभी सेमिनार हल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार फ्री वाइफाई पार्किङ एरिया फ्यामिली एण्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट कस्टमर सेटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स न्यू अग्निको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छु गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक इमेल होटल अग्निको @gmail.com contact 011-620-326-9860-982293 new Aroniko hotel and restaurant private limited Kautara Shankar Subani Nagar Palika 5 Sindhu Pasu
2: Elumbu FM 89.6 megahertz.

0: Ilambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइफी नला विश्वासी समक बस्युगो रंगला पहिचान तिगरी आधारित मुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथला जीवनला क्षण गतिदेन श्रृङ्खलाला अङ्क एघार रङ्गी स्वागत मुला म वियोग तामाङ तिनीङा रङ याकर्गी प्रश्न न्योइ बरी से मुला रङला पहिचान तिगरी आधारित मुला यदि थेलिसँग परिवर्तन हाजी विषम रङ हाला मुसिला बिव बारेरि धारणा एन परिवर्तन तला उदाहरण लागि रित्तिकै मिगदे रङला फ्रिक्याप्ल रूपल आधारित रङला पहिचान सुमुला जब थेनी गदेला शारीरिक रूप आकर्षित मृङ्गुला जब मृङ्गुला थेनी गदे लुइदेन ताङबादेन सन्तुष्ट तामुला तसै जब थेनी गदेला तिगै तामुला जुन चाहिँ एनी गदेला शारीरिक रूप दा बाधा लमुला थेनी गदे दुखी देन निराश तामुला रङदेन क्वानबाला लागिरी जब क्वान आरिबा कारणशिलामा रङ दुखी ताबरी हामसुमुला वा रङला लिरी सेम डन्डी फोर नाङबा कारणसे रङ दुखी ताबरी हामसुला स्यान्दो मिगदेसे लुइला परिस्थिति थेनी गदेसे हरङ्ब प्रदर्शन लामुला विवा आधारी रङला पहिचान सुमुला जब थेनी गदे स्कुली तामुला थेनी गदे थेन्दे परिछरी उत्तीर्ण तामुला थेनी गदे ताङबा तामुला तसै जब थेनी गदेसे परिछरी जात चाङना अङ्क याङमुला थेनी गदे दुखी तामुला दर्यम अवश्ययन बेनन चाङना अङ्क याङमा रङदेन निराश तामुला तसै रङ स असफलता ग्याम काते योना दोषीमुला सफलता वा असफलता रे रङला पहिचान शोभ गदे से हाजीबै तामै सफल अथवा दुई हेरङबा दुई दोना निराश चिबारी मैमुला तिग्द विषम थेनी गदेला आत्मसाई थेनी गदे हाजीबै तामै सफल ताजी वा आरे मुबासे खपत तला मेगदेश हाइमा हाइमा रङला पहिचान शोभ अर्को ताम विवा सन्दोला विचार हिन्न जब मिगदेसे थेनी गदे त प्रशंसा लमुला थेनी गदे रङ द जेब महसुस लमुला तसै जब मिगदेसे थेनी गदेला आलोचना लमुला चुसे थेनी गदेला रङ पिला विश्वास से नष्ट लमुला यदि याङसे सही तम्बी याङला पहिचान शोभ छनौट लजी विषम याङला भावनात्मक अवस्था याङला परिस्थिति रे हाव परिवर्तन याङला प्रदर्शन लाभ तरिका वा मिगदेसे याङ द तिग विमुला विवा आधारित फेरि देन मार्नी वा रोलर कष्ट रङ तासेला अरे जब भावनात्मक रोलर कष्ट जीवन शैली ग्याम बग्दीवाला लागेरी याङसे याङला पहिचान द परमेश्वर से याङ द ख्रिस्टी ताबला लागेरी सृष्टि लस्युबा बाङबा जग्री सोबरा आवश्यक मुला पहिला युहन्न तीन अध्यायला दुई नला सेम निभा रोगदे दन्देचा याङ परमेश्वरलान सन्तान हिन्न जब याङ परमेश्वर चे याङ द ख्रिस यसुमा तबला लागेरी सृष्टि लस्युबा तमला आधारी याङला पहिचान सोमुला याङ याङला शारीरिक उपस्थिति हावा परिवर्तन गरे याङसे अनुभव लगा असफलता गरे देन मिगदे ज्ञान तब आलोचना गरे देन भावनात्मक रूपी व्यवहार लबरी हाम्बा तला थे बेनान ताम गरे याङला लागिरी साचिन महत्वपूर्ण ताम परमेश्वर लङ्छ याङला अडान जुन हाइमै परिवर्तन आतामुला प्रति पछरी बाबा तामुला पहिलो कोरन्थी एक गदेला तीस बरु परमेश्वर सेन एनी गदे द ख्रिस एसिडेन छ्याम गिक शोभामुला परमेश्वर ज्ञान सेन ख्रिस याङला ज्ञान बुद्धि दोबा मुला थेरङ्गसी ख्रिस ज्ञान सेन याङ द परमेश्वर द सेम निभा मि सोजी ओचे याङला पापल सही फासी याङ द चोखो सोसी फेबा मुला परमेश्वर जे ख्रिस एसोरी याङला लागि याकर्गी जब गे लसुजे जब थे याङ्ला पहिचान ल जग दोमुला याङ्ला भावनात्मक रूप स्थिर तामुला चु याङ्ला व्यक्तिगत दुरी तब फिर्क्याब्ला ताम गजेसे याङ्ना चेखेन प्रभावित तामुला रोमी आर अधेला चौंड तिग्द विषम परमेश्वर आत्मा से उन ग्याम्री ब्रवा मिगदे जे परमेश्वरला कोला गदे हिन्ना रङ्दा परमेश्वरला सन्तानला रूपी मसिसुगो परमेश्वरला आत्मादा रङ्ला भावना गदे दल मार्गदर्शन लबरी पिन्सुगो थेन्दे रङ यसु ख्रिस्ट जेन सम्बन्ध अरेबा स्वन्द मिगदेसी अनुभव एन रोलर कोस्टर लुइग्याम पजिटिभसुला रोमी आठ अधेला सत्र याङ परमेश्वरला कोला गदे हिंसम याङ परमेश्वरला हक याङबा मि हिन्न ओचे चु एक ख्रिस्ट देन छ्याम तसी याङला तर थेरङ लसिन ख्रिसे नाबा दुःख याङसी नोन नाजी विषम ख्रिसे याङबा मान याङसी नोन याङला याङदा परमेश्वरला सन्तानला रूबी मोसे वा छोनोट लस्युगो जब रङसे थेरङ लसुला रङला लुई आनन्द देन शान्ति से भरी पूर्णतला जुन रोदेन छ्यामला सम्बन्ध ग्याम जेखेन याङबरी हामला यसु ख्रिस ग्याम याङदेन अनन्त आशा मुला आमेन रङला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु रे प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर ग्याम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गनी छङ्मदानु जयमसी नमस्कार।